0: शानाशिप
1: हेंगे हेंगे हेंगे हेंगे हेंगे ना कुलहा
0: आयो पुरंगु शाहन्यांगन हकानुन
1: हेंगे बागे
2: मगा मगा